क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु

0: दोस्तों को मत ऐ दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु

0: suku.
1: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: You are listening to 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are listening. We are... Fazan 97.1 FM।
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
5: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
5: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
5: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rulleton Park Formal Gardens, Nottingham, NG82AE. Book your tickets, rulletonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats. Wow,
8: FM. Only tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क।

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8, 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026, 12 p.m. to 5 p.m., last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8-2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आए और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला।
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
11: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
1: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
11: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
11: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
1: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
11: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
12: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
11: टेस्ट भी वाइब भी।
0: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोजी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Fuzan 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: मैं थोड़ा ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Get ready to move.
8: It's all about the beat.
9: Wow FM. Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: Zabardast hits.
1: Music never sounded better.
2: Fizz on 97.1 FM.
1: I love it.
3: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
4: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
5: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
6: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक।
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ। हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: This is a public service announcement.
16: The station that plays
17: foot tapping music.
18: Hazar 97.1 FM.

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर। हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, वन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/Eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
6: रेडियो फजा 97.1 FM।

0: 97.1 FM।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
6: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
6: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
5: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
6: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
6: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
5: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: Back to back, hip hop, music.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: 24/7 365, दिस इज फजाना 97.1 FM। रुको मत,

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
7: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंगम, NG8 2AE।
8: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
9: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
10: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: Hate music.
1: Back to back.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: 97.1 FM.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Fazan 97.1 FM.
4: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
5: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
6: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
7: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रापता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
7: hayatweddings.co.uk।
8: Are you ready?
9: If you want to listen a super hit song and get more information, then don't hesitate. Only tune Super Hit Channel.
10: Fizzon 97.1 FM.
11: Fizzon 97.1 FM.
12: It's so garam.
13: There's nothing stopping this one, man.
14: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
15: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07828139630 और 07779705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार।

0: bigger and better. Better. The radio station for people who love music.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Fuzan 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: Hit music.
1: Back to back.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all.
1: Theriye zara. Ye commercial to sun le.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।

0: या फिर ऑफिस में।
1: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: You are playing Fazan 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026, 12 p.m. to 5 p.m., last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
1: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
1: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: Zabardast hits.
4: Music never sounded better.
5: Fizz on 97.1 FM.
4: I love it.
6: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है. ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है. चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग. ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है.
7: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो. पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट. स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे. हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं. ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से. कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस. Fun day for all the family. Please contact 07-828-139-630 or 0777-970-5825. Woollerton Park, Formal Gardens, Nottingham, NG82AE.
8: To phir intezar kis baat ka hai? Eat mila. Book your tickets. Please visit woollertonhall.org.uk/eat.
9: Media partner Radio Faza.
10: This is a public service announcement.
11: The station
12: that plays
13: foot tapping music.
14: Hazar 97.1.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक।
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ। हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर। हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
1: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंगम NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/Eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर जी।

जी तो लिसनर्स, जैसा कि है आज जुमातुल मुबारक, यानी कि हफ्ते का वो दिन जिसे कंसीडर किया जाता है सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा स्पेशल फॉर ऑल द पीपल, स्पेशली उन तमाम तर एशियन फैमिलीज़ के लिए और मुस्लिम लोगों के लिए। जुमे का दिन एक ऐसा दिन समझा जाता है जहां आप अपने पूरे वीक की हैक्टिक रूटीन से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा साइड पे होके एक अलग से टाइम निकालते हैं, जिसमें आप अपने अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को बिल्ड करते हैं। ना सिर्फ इस कनेक्शन को बिल्ड करते हैं बल्कि इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। जी तो लिसनर्स, आज के दिन की मुनासिबत से करेंगे खूब सारी गपशप, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं अब से लेकर ठीक दो घंटे तक साथ साथ, सो गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन अभी शामिल करते हैं शो में एक खूबसूरत सा कलाम, ताकि आपके इस दिन का स्टार्टअप थोड़ा खूबसूरत हो, थोड़ा सूफियाना हो। सो सुनते हैं आपदा परवीन का यह खूबसूरत सा कलाम।

सी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को जिससे आपदा परवीन साहिबा ने अपने खूबसूरत सी आवाज़ में पढ़ा है ज़रूर इंजॉय किया होगा। वैसे तो कहा जाता है म्यूज़िक के बारे में तो सभी लोग कहते हैं कि म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी डेट हील्स योर सोल, बट अगर हम सूफ़ी कलाम की बात करें या फिर सूफ़ीज़म की बात करें, सो मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर सेइंग कि सूफ़ी कलाम इंसान को ज़्यादा फैसिनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक में हम बात करते हैं दुनिया की चहल पहल की, दुनिया की रौनकों की, लेकिन जो सूफ़ी कलाम होते हैं जो कि सूफियाना तर्ज पर लिखे जाते हैं उनमें हम बात करते हैं ज़्यादातर सूफ़ीज़म की, सूफ़ीज़म के साथ साथ इश्क हकीकी की और साथ साथ इश्क मजाज़ी की। यानी कि इस कलाम की खूबसूरती ये होती है कि इस कलाम में जो ऑथर होता है यानी कि जो हमारे राइटर होते हैं वो इस चीज़ का खुलासा करते हैं कि जो ये कलाम है वो किस तरह से अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने इश्क हकीकी यानी कि दुनियावी मोहब्बत जिसके साथ इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसको इंसान दिली तौर पर पसंद करता है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। सो सूफ़ी कलाम इंसान को ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं और सीधा रूह में जाके लगते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने भी इस खूबसूरत से कलाम को जिस तरह मैंने इंजॉय किया है इसको बारीकी से समझकर आपने भी इंजॉय किया होगा। जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे हर दिन का आगाज़, हर नई सुबह का आगाज़ होता है एक खूबसूरत सी बात से, यानी कि एक ऐसी बात जो कि हो मोटिवेशनल और आपके दिन को बनाए और भी ज़्यादा खूबसूरत, पॉजिटिव और एनर्जेटिक। सो जैसा कि आज जुमातुल मुबारक है, यानी कि जुमे का दिन बेसिकली एक ऐसा दिन समझा जाता है जो कि एक तरफ से तो हमें इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जुमा के दिन हम अल्लाह ताला के साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें जुमा का दिन इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इट्स नियर टू द वीकेंड। सो जब भी जुमा आता है सो ऑटोमेटिकली हम सभी के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि फाइनली द टाइम हैज़ कम जब वीकेंड एंड होने वाला है, और हम लोग इस बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं कि चलें अब वीकेंड आने वाला है। सो फाइनली जो होल वीक हमने एक हेक्टिक रूटीन फॉलो की है, जो काम किया है डेली बेसिस पे, ऑफिस किए हैं, उससे हमें एक ब्रेक मिलने वाला है। सो आज के दिन का आगाज़ भी करेंगे एक इसी तरह की खूबसूरत सी बात से। सो कहा जाता है फ्राइडे इज़ अ रिमाइंडर डैट नो मैटर हाउ हेक्टिक द वीक इज़, पेस इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू एट द वीकेंड, डोंट कैरी येस्टरडेज पैकेज इन टू टुमोरो स्काई। सो बेसिकली जुमा का दिन इस बात का की निशानी होता है कि जैसे कि पूरा हफ्ता हमने इतनी मसरूफियत में गुजारा, इतने कामकाज में गुजारा, और कहीं ना कहीं हम पूरा हफ्ता इस कदर बिजी थे कि हमें टाइम नहीं मिला खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का और सबसे बढ़कर अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को बिल्ड करने का। सो जुमे का दिन एक टाइम होता है जिसमें हम अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, हम अपने आप को दुनिया की थोड़ी सी मसरूफियत से साइड पर कर सकते हैं। सो माई लवली डीवाज और मेरे तमाम तर लिसनर्स, मंडे से लेकर थर्सडे होता है कामों के लिए, हेक्टिक रूटीन के लिए, लेकिन फ्राइडे का दिन सिर्फ और सिर्फ मखसूस किया करें अपने उस कनेक्शन के लिए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। यानी कि ये दुनिया के सारे कामकाज तो एक तरफ, लेकिन इंसान का इस दुनिया में आने का असल मकसद और असल पर्पस ये होता है कि वो अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करे, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी में गुजारे, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को खुद से साइड पे कर दे। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि सिर्फ इबादत कर लेने से वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा या फिर उसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन स्टिल वो बहुत मैटर करती हैं। सो इस फ्राइडे हम फोकस करेंगे उन तमाम से चीज़ों पे जो कि होती तो छोटी हैं लेकिन हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत हेल्प आउट करती हैं। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ ही अभी शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो चलते हैं, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा, और खुशामदीद करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में। जी तो लिसनर्स, ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। तो एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो आप जल्दी से जाइए और इस नंबर को सेव कर लीजिए, ताकि फिर आप मुझे कोई भी प्यारा सा पैगाम लिखकर भेजें और आपकी और मेरी गपशप का सिलसिला आगे बढ़े। इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू ट्यून कर सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर जाने लगे हैं ड्राइव पर, होता है ना कि समटाइम्स इंसान का दिल करता है कि अगर उसे कहीं नहीं भी जाना, कोई सफ़र नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, लेकिन दिल करता है कि क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। सो आप अपने ड्राइव को, अपने सफ़र को खूबसूरत बना सकते हैं फजा डैप के थ्रू। ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। जी तो लिसनर्स एंड माय लवली डीवास, अभी वक्त हुआ है हमारे शो के उस सेगमेंट का जिसमें हम बात करते हैं कुकिंग की, बात करते हैं किचन की, और बात करते हैं रेसिपीज की। सो हर रोज की तरह, जैसा कि आज है फ्राइडे यानी कि जुमातुल मुबारक, सो अक्सर एशियन फैमिलीज में एक ट्रेडिशन होता है कि जुमा के दिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा डिफरेंट खाना बनाएं। मोस्टली तो जुमे को लोग बिरयानी के साथ कंसीडर करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि बिरयानी तो चले हम बनाते रहते हैं, आज हम कुछ न्यू ट्राई करें, कुछ ऐसी रेसिपीज जो बेसिकली तो कॉमन सी हैं, हम सभी ने सुनी हुई हैं, लेकिन एक नए डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट पैटर्न से आज हम उनको बनाकर देखते हैं। सो जी तमाम तर लेडीज जो इस वक्त किचन में मौजूद हैं या फिर क्लीनिंग कर रही हैं या क्लीनिंग कर चुकी हैं, अभी वक्त है, अभी उठाइए एक अदर डायरी और साथ पेंसिल, ताकि आप तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर ले और कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए।

तो लिसनर्स, आज हम बनाएंगे मजेदार से स्पाइस किचन में तीन रेसिपीज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन कोर्स की। सो आज का हमारा मेन कोर्स है अचारी गोश्त। ये जितना ही दिखने में सिंपल सा लगता है, बट ट्रस्ट मी, इसे बनाना भी उतना ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आप मेरे वाले तरीके से बनाएंगे सो आपको फील होगा कि टेस्ट कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग सा फ्यूजन है। सो जी, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब। सो सबसे पहले अचारी गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। आप कोई सा भी मीट यूज़ कर सकते हैं, चिकन, बीफ, मटन, इट्स टोटली योर चॉइस एंड इट्स टोटली अप टू यू। सो हमने ले लेना है मीट 1 kg। सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है योगर्ट। अच्छा, अचारी गोश्त चूंकि बहुत ज़्यादा चटपटा और बहुत ज़्यादा खट्टा सा होता है, तो इसके लिए हम योगर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि योगर्ट की खटास हमारे खाने को मज़ीद इन्हेंस कर दे। सो इसमें हम शामिल करेंगे 1 cup योगर्ट एंड टमाटोज, जिन्हें हम अच्छी तरह से प्यूरी बनाकर रख लेंगे 3 से 4 अदद। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि हर खाने में कंपलसरी होता है एंड आई थिंक जिंजर गार्लिक के बिना तो कोई खाना बन ही नहीं सकता। सो शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons। हरी मिर्चें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद, जिन्हें हम अच्छे से कट करके रख लेंगे, और लेमन जूस 2 tablespoons। और हमारा मेन इंग्रेडिएंट जिस पे बनता है हर खाना, यानी के कुकिंग ऑयल या फिर बासमती घी। ये तो थे वो सभी इंग्रेडिएंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी रेसिपी के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोई भी रेसिपी तभी अच्छी बनती है, तभी मज़ेदार बनती है जब उसमें परफेक्ट बैलेंस मसाले हों। सो इस रेसिपी के स्पाइसेस आप सभी से शेयर करती हूँ। अगर हम स्पाइसेस को इक्वली क्वांटिटी में रखें तभी हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। सो स्पाइसेस में तो सबसे पहले शामिल होगा अचारी मसाला। अच्छा, अब इस मसाले को किस तरह से बनाना है, सो आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं, आपको सुपरमार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली आपने लेना है सौंफ, कलौंजी, राई, उसके बाद साबित धनिया, ज़ीरा, इन सभी को आपने अच्छी तरह से पीस कर 1 से 2 tablespoons बनाकर रख लेना है, और आपका ये मसाला हो गया तैयार। ये वो वाहिद मसाला है जो कि आपकी इस रेसिपी को बनाएगा सबसे ज़्यादा डिलीशियस, सबसे ज़्यादा मज़ेदार। सो अब बाकी स्पाइसेस की जाने बढ़ते हैं। सो इस रेसिपी में शामिल करेंगे हम 1 tablespoon लाल मिर्च, 1/2 tablespoon काली मिर्च एंड 1.5 tablespoons हल्दी और नमक हसबे ज़रूरत, हसबे ज़ायका।

आई थिंक लिसनर्स आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद और सूफी कलाम को शामिल करने का। चलिए चलते हैं, सुनते हैं यह खूबसूरत सा जास्पे नजम कलाम और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी को।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को इंजॉय किया होगा। सो आप सभी ने देखा, हमारा ये खूबसूरत सा कलाम भी कहता है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तभी इंसान गॉड तक पहुँच सकता है, यानी कि अल्लाह के साथ अपने इस कनेक्शन को बनाने की जो हमारी जर्नी है वो बहुत सिंपल है। अगर बाज़ों का लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट नो, इट्स रियली सिंपल, इट्स रियली इजी। सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको अपनी नीयत साफ़ रखनी होती है, प्लस अपने दिल को साफ करना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि खुदा सिर्फ उन्हीं दिलों में बसते हैं जिनके दिल साफ होते हैं हर तरह की बुराई से, हर तरह की नेगेटिविटी से। सो अगर चाहते हैं कि अल्लाह के साथ आपका ये कनेक्शन इसी तरह से मजबूत हो तो अपने दिल को साफ करें। जिस तरह से हम थ्रू ऑफ द होल वीक हम ये सोचते हैं ना कि हम दिखने में खूबसूरत दिखें, प्यारे दिखें, मॉडर्न दिखें, स्टाइलिश क्लोथ्स पहने और ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का क्या फ़ायदा कि अगर हमारा दिल अंदर से साफ नहीं है, या फिर हमारे दिल के अंदर दूसरों के लिए बुगज है, कीना है, दूसरों के लिए बुराई है, या फिर हम किसी से हसद कर रहे हैं। सो ये ही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मैंने जिक्र किया था शो के स्टार्ट में कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और यही हमारे अल्लाह के कनेक्शन बिल्डिंग में हमें हेल्प आउट करती हैं और उस कनेक्शन को मजबूत बनाती हैं। सो कोशिश करें कि नमाज, इबादत, ज़कात, ये तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इन छोटी छोटी चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखें। जी तो लिसनर्स, जैसा कि हम इस खूबसूरत से कलाम से पहले बात कर रही थे हमारे आज के मेन कोर्स की, जो कि है अचारी गोश्त। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए थे, अब आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने हरी मिर्चें ली थी उनकी हम फिलिंग कर लेंगे ताकि हमारा टेस्ट इन्हेंस हो, और जितनी देर में हम फुल रेसिपी तैयार करें उतनी देर में अच्छे से मिर्चें बैलेंस कर जाएं।

ओके जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो अचारी मसाला हमने बना के रखा था इसे हम लेमन जूस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका जो पेस्ट बनेगा उसे हम उन हरी मिर्चों के अंदर जिन्हें हमने कट करके रखा था लगा के रख देंगे। सो अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे ताकि 10 से 15 मिनट में मिर्चों के अंदर मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए और हमारा ओवरऑल लुक प्रेजेंटेशन खूबसूरत बने। अब चलते हैं कुकिंग की जानिब। सो सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन या फिर कढ़ाही, उसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, तब तक गर्म करेंगे कि अच्छे से वो गर्म हो जाए और हल्का सा ब्राउन दिखने लगे, ठीक है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही साथ अपना गोश्त जो हमने लिया था। मैंने तो वैसे चिकन लिया है, आप सभी ने क्या लिया है आप वो शामिल कर लें। और इसे डालकर हम 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है इसका रंग बदल जाए और अच्छी तरह से हमारा जो गोश्त है वो ब्राउन दिखने लगे, ठीक है। अब इसी में जो बाकी बचा हुआ हमारा अचारी गोश्त का मसाला था इसे शामिल करेंगे, टमाटर की उस प्यूरी को शामिल करेंगे, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, इन तमाम तरह चीज़ों को हम शामिल कर देंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो इस थोड़े से पानी के अंदर पक जाए। अब हम इसे ढक कर रख देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। जब हमें लगे 5 से 10 मिनट के बाद, बीच बीच में आप इसे बार बार रीचेक करते रहें ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो गोश्त है वो कहीं ओवर कुक हो जाए। सो इसीलिए जब भी कुकिंग कर रही हूँ सो हमें बीच में थोड़ा थोड़ा चेक करते रहना चाहिए और टोटली कैलकुलेशंस पे नहीं बल्कि ओवरऑल फ्लेम पे चलना चाहिए। जैसे कि समटाइम्स होता है ना कि हमारी आंच तेज़ होती है तो वही चीज़ जल्दी बन जाती है और समटाइम्स नहीं बनती। सो आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि आपका गोश्त ज़्यादा नरम तो नहीं है और कहीं ज़्यादा सख्त भी नहीं है। जब लगे कि बिल्कुल बैलेंस गल चुका है तब, और पानी भी खुश्क हो चुका है, तो आप आंच बिल्कुल हल्की कर दें और साथ ही साथ इसके अंदर हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है योगर्ट इसे शामिल कर लें और फिर अच्छी तरह से इसे पकाएं 2 से 3 मिनट के लिए। और लास्टली जो हरी मिर्चें हमने साइड पर रखी थी स्टार्टिंग में उन तमाम तरह हरी मिर्चों को भी इसके अंदर शामिल कर दें और इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम पर रख दें और 6 से 7 मिनट के बाद आपका अचारी गोश्त हो गया तैयार। जी तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? देखा कितनी सिंपल सी, कितनी बेसिक सी थी, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप इसको ट्राई करेंगे सो यू मस्ट से कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है, बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट फ्यूजनल है। सो आज जैसा कि जुमातुल मुबारक का दिन है सो एशियन फैमिलीज़ का तो ये ट्रेडिशन होता है कि कुछ खास कुछ स्पेशल बना जाता है। सो लाजमी ट्राई कीजिएगा आज ही इस अचारी गोश्त को और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई थिंक सो अब थोड़ी मीट की बातचीत हो गई है। सो जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है वो उन तमाम तरह लिसनर्स के लिए है जो कि मीट लवर्स नहीं हैं और वेजिटेरियन हैं, क्योंकि आई नो वेजिटेरियन लोगों को भी चाहिए होता है मज़ेदार डिलिशियस खाना और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि वेज में अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते। लेकिन अगर आप ढूंढें तो हर चीज़ में हर जगह में अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सिर्फ इंसान के एक माइंड का मिथ होता है कि इंसान के पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली अगर इंसान अपने माइंड का जाविया बड़ा करे तो दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। बहरहाल बात तो हम कुकिंग की कर रहे थे।

0: जी तो लिसनर्स, क्या बात कर रहे थे हम तो बात कर रहे थे रेसिपी की, लेकिन वही बात है ना कि बातों में से बातें निकलती हैं और इंसान किसी दूसरे ही रुख पे चला जाता है। तो जी लिसनर्स, बात मैं कर रही थी कि उन तमाम तरह लिसनर्स के लिए जिन्हें पसंद है वेज खाना, तो डोंट वरी, आपके लिए भी मैं लाई हूँ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप ट्राई करके बोलेंगे कि वाओ क्या बात है। सो बिल्कुल भी वक्त आया नहीं।
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
2: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

जी तो लिसनर्स, हमारी आज की सेकंड रेसिपी है मज़ेदार सी दाल मखनी। तो जी आप सभी से शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट के किस तरह से हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी दाल मखनी। सो सबसे पहले इसके अज्जा में हमें चाहिए साबित दाल, ठीक है। अब दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको पसंद हो आप वो वाली दाल ले लें, ठीक है। आपने लेनी है 1 कप, ठीक है, जिसे आपने एक दिन पहले भिगो के रख देना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दालों को क्यों भिगो के रखते हैं। सो कहा जाता है कि अगर हम दाल को एक दिन पहले या एक रात पहले भिगो कर रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खिली खिली बनती है, निखरी निखरी दिखती है। सो इसकी ओवरऑल लुक और इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए हम हमेशा दालों को और चनों को भिगो के रखते हैं। सो सेकंड हमें इंग्रेडिएंट चाहिए इस रेसिपी के लिए राजमा, जिसे कहा जाता है उर्दू में लोबिया, हिंदी में राजमा और इंग्लिश में रेड किडनी बीन्स। हमें चाहिए 1.5 कप, जिसे भी हमने भिगो के रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है मक्खन, 4 टेबलस्पून। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम 1.5 कप, टमाटर की प्यूरी 1 कप, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और जो हमारी रेसिपी को बनाएगा बहुत ही ज़्यादा उम्दा वो है जी कश्मीरी लाल मिर्च। सो हम शामिल करेंगे अपनी इस दाल मखनी में कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कसूरी मेथी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपनी रेसिपीज़ में अपने खानों में कसूरी मेथी यूज़ करती हूँ 1 टीस्पून। सो बेसिकली कसूरी मेथी जो नहीं है वो टेस्ट इन्हेंस करती है, खुशबू का काम करती है। इसके बिना भी आप रेसिपीज़ बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको शामिल करेंगे तो आपकी रेसिपी बनेगी और भी ज़्यादा खूबसूरत। सो द लिसनर्स, इसी के साथ साथ शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
5: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन,

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

जी हाँ, वेलकम बैक खुशामदीद मेरे सभी लिसनर्स जो कि मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। एक बार फिर से आप सभी को बताती चलती हूँ, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रही हैं दीवा डायलॉग विद रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM। जी हाँ, तो लिसनर्स, जैसा कि गपशप करते हुए, गुफ्तगू करते हुए वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और आपको और मुझे साथ में तकरीबन एक घंटा हो चुका है। वही ना कहा जाता है कि जहाँ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, इमोशनली अटैच हो आप लोग एक दूसरे के साथ, तो वहीं आपको गुफ्तगू करते करते वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। और कुछ इसी तरह से आपको और मुझे भी बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक घंटा हमें साथ में हो चुका है। एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो आप जल्दी से जाइए इस नंबर पर, जाके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस। इसके साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कोई अच्छे एडवाइस तो आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। आई नो, वैसे मैं इतनी अच्छे खास एडवाइसेस देती नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं, मेरी मामा कहती हैं कि अगर कोई मुझसे एडवाइस ले तो मैं अगले बंदे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हूँ। लेकिन आप सभी लिसनर्स को मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आप मुझसे कुछ ऐसा शेयर करो जो कि मैं सभी लिसनर्स से शेयर करूँ, सो 01157100971 है आपका और मेरा रابطے का नंबर। सो आप जल्दी से जाके इस नंबर के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे हमेशा से आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और साथ ही साथ बताती चलती हूँ अपने उन तमाम तर नए लिसनर्स को जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सिर्फ इसी वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, अपने दिन को, अपनी सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जी तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दाल मखनी की, और आई थिंक मैंने अपनी तमाम तर डिवाइस के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स शेयर कर दिए थे। सो अब आगे बढ़ते हैं और रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तमाम तर फूडी लिसनर्स को इंतज़ार होगा कि कब जल्दी जल्दी से हमें ये रेसिपी मिले। सो जी, इसकी इंग्रेडिएंट्स आप सबसे मैंने शेयर कर दिए हैं सिंपली। अच्छा, स्पाइसेस का जो मेजरमेंट है ना, वो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको एक्स्ट्रा मसाला ज़्यादा पसंद हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत बैलेंस होती है, बहुत ही नॉर्मल होती है। उन लिसनर्स के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम सबके घर में बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी लोग रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्पाइसेस को उस लेवल से रखूँ कि अगर बच्चे भी खाएं तो वो डाइजेस्ट कर सकें और अगर बुज़ुर्ग भी खाएं तो वो भी उसको डाइजेस्ट कर सकें।

जी तो लिसनर, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी दाल हमने सिलेक्ट की थी उसे और राजमा इन दोनों को अच्छा से नमक डालकर प्रेशर कुकर में रख देना है, ठीक है।

पाँच से दस मिनट के लिए रखें कि अच्छी तरह से उबाल आ जाए और दाल बिल्कुल गल के नरम हो जाए। ठीक है, हमने तब तक के लिए दाल को पकाना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाए ताकि हम उसको आराम से मैश कर सकें। ठीक है, अब साथ ही साथ हमने क्या करना है, एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लेना है और इस कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और प्याज को हम तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा प्याज गुलाबी हो जाए। फिर बारी आ जाती है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट की और टमाटर की प्यूरी की। सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और विद इन अ फ्यू मिनट्स हम शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब बारी आती है हमारे इस रेसिपी में शामिल करने की अपने मेन मसाले को। तो हमारी दाल मखनी के लिए जो स्पेशल मसाला हमने शामिल करना है वो है कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही साथ उबली हुई दाल। अच्छा, अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम बिल्कुल हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। जितनी आहिस्ता आंच में आप इसको पकाएंगे उतना ही ज़्यादा मखनी टेक्सचर बनेगा और दाल बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और अच्छी अच्छी लगेगी। अच्छा, अब इस पॉइंट तक हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है, लेकिन अब सिर्फ ज़रूरत है एक आखिरी स्टेप की जो कि बचा हुआ है। अब आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे जो भी हमारा बचा हुआ मक्खन था, उसे क्रीम को और साथ ही साथ उस मसाले को। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे और फाइनली हमारी मज़ेदार सी दाल मखनी हो गई तैयार। आई होप लिसनर्स आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो जितने भी मेरे वेज लिसनर्स हैं जो कि वेजिटेरियन खाते हैं, जिन्हें मीट से है थोड़ी सी उलझन, बल्कि थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा उलझन, तभी तो खाते नहीं हैं, आप सबके लिए ये हेवन है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे मजीद रेसिपीज के लिए 01157100971 पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सी रेसिपीज पसंद हैं, ताकि मैं वही रेसिपीज शो में शामिल करूँ। तो लिसनर्स, गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, इस तरह से आपकी और मेरी गपशप तो साथ ही साथ जारी रहेगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी देर हो गई है तो कोई खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, जैसा कि है आज जुमतुल मुबारक का खूबसूरत पाक पर बरकत दिन। सो आज के दिन की मुनासिबत से ये नफक का खूबसूरत सा कलाम है, मेरी नज़रों के सामने से घूम रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे शो में शामिल करें। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम, आपसे मुलाकात होगी कलाम के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

जी तो लिसनर्स, जैसा कि बात हो जुमा की, बात हो मजेदार से चटपटे खानों की, लेकिन अगर साथ ही साथ हम मीठे की बात ना करें तो इस तरह से तो हमारा दिन भी नहीं गुजरता और आई थिंक मील भी अधूरा रह जाता है। सो अब इस खूबसूरत से मील को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल बनाने के लिए आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी मजेदार सी रेसिपी, जो कि होता है ना कि अक्सर खाना खाने के बाद, कुछ नमकीन खाने के बाद, और जब हो ऐसी चटपटी सी रेसिपी जैसे कि अचारी गोश्त और हो दाल मखनी, तो इंसान का दिल करता है कि चलो आप कुछ लाइट सा, कुछ डिलाइट सा मीठा खाया जाए। सो इसके लिए आज हम बनाएंगे रसमलाई। आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि रसमलाई की रेसिपी तो बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सी है, लेकिन हम आज इसको बनाएंगे बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा सा अलग करके। हम सभी ने अपने टीनेजर्स में कर लो या फिर बचपन में कर लो तो हमने लजीजा रसमलाई तो काफ़ी ज़्यादा खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑथेंटिक रसमलाई बनाने का तरीका। सो सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स की जानिब बढ़ते हैं, आप सभी से शेयर करती हूँ इंग्रेडिएंट्स ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो और आप आराम से इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लें। सो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए दूध यानी कि मिल्क 1 लीटर, और इसके साथ साथ हमें चाहिए ड्राई मिल्क पाउडर 1 कप। अच्छा, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर हमेशा हम कम क्वांटिटी में रखते हैं क्योंकि इसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे रेसिपी को अच्छा बनाना होता है, ऐसा जिसका टेस्ट से तो कोई लेना देना नहीं होता। सो हम रखेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जी फ्लोर यानी कि मैदा 1 टेबलस्पून। साथ ही साथ हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे अंडे 1 से 2 अदद, बासमती घी 1 टेबलस्पून, शुगर 1.5 कप, इलायची पाउडर 1/2 टेबलस्पून, और लास्टली हम गार्निशिंग के लिए अपनी रेसिपी को खूबसूरत दिखाने के लिए यूज़ करेंगे पिस्ता और बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हों, पड़े हुए हों। आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, वॉलनट शामिल कर सकते हैं, हेज़लनट शामिल कर सकते हैं, या फिर बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी एनीथिंग जो भी आपके घर में मौजूद है आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ पिस्ता और बादाम। तो जी लिसनर्स, ये थी हमारी इंग्रेडिएंट्स एंड माई लवली डिवास। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेसिपी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध अच्छे से उबाल कर रख लेना है, फिर हमने इसमें शामिल करनी है चीनी, इलायची पाउडर और बिल्कुल मीडियम आंच में इसे 10 मिनट तक पकाना है। अच्छा, आप इसे 10 मिनट से ज़्यादा देर भी पका सकते हैं, तब तक भी पका सकते हैं जब तक कि आपका दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, तब तक के लिए आप इसको पकाते रहें। अच्छा, अब आपने साइड में डो बनाने के लिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रसमलाई के अंदर जो हम सर्कल्स बनाकर शामिल करते हैं वो दिखने में तो बहुत यमी लग रहे होते हैं, तो आइए सीखते हैं उनकी मेकिंग। सबसे पहले आप एक अलग से बाउल ले लें, उसके अंदर आपने ड्राई मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, मैदा और घी, इन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर लेना है, फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब आप इसे थोड़ा थोड़ा करके फेंटें और फेंटते हुए आपने इसके अंदर अंडा शामिल करना है ताकि एक नरम सी डो हमारी रेडी हो जाए। याद रखिएगा कि डो हमेशा नरम हो, सॉफ्ट हो, तभी हम उसको अच्छे से बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड फॉर अवर रेसिपी। सो डो को बहुत आराम से, बहुत प्यार से, हल्के हाथों से बनाएं। अब हमारी बारी है नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हम बनाएंगे इस डो की मदद से छोटे छोटे बॉल्स। सबसे पहले हमने डो को फौरन छोटे छोटे गोल्स यानी कि ओवल शेप में ले लेना है, ठीक है, और इन्हें हल्का सा फ्लैट कर लेना है, ठीक है, और इसे इसी तरह से बनाकर एक प्लेट पे रख लेना है। अब इन बॉल्स को फौरन उबलते हुए गर्म दूध में डाल दें, पैन को हमने अच्छे से ढक देना है बिल्कुल मीडियम आंच पर, ठीक है, 5 से 7 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे, और जैसे ही हमारे बॉल्स थोड़े थोड़े
फूलने लगेंगे या साइज पे थोड़े से डबल हो जाएंगे। सो इट्स द मोमेंट कि हमारे ये बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हल्के हाथों से हम फेंटेंगे और आराम आराम से चमचा हिलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपने हार्शली चमचा नहीं हिलाना, इससे क्या होगा कि जो हमारे बॉल्स हैं वो सभी टूट जाएंगे और रसमलाई की ओवरऑल लुक प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि हमेशा से मीठे का मज़ा तो ठंडा करके ही खाने में होता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और जून के आते ही गर्मी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। सो इस मौसम में ठंडी ठंडी रसमलाई हमारे खाने को तो डिलीशियस बनाएगी, साथ ही साथ मूड को भी। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का द स्पाइस किचन फॉर माई ऑल द लवली डिवास के लिए, बल्कि उन तमाम तर मेल लिसनर्स के लिए भी जिन्हें कुकिंग का शौक है या फिर उम्दा खाना खाना चाहते हैं। सो आज आप सभी के लिए मैंने बनाया अचारी गोश्त, दाल मखनी और रस मलाई। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। अगर तो आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी हैं तो अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। आप किस तरह से शेयर करेंगे? 01157100971। जी तो लिसनर्स, ये है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो आप इस नंबर के जरिए से मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी, और ऐसे मजेदार रेसिपीज सीखने के लिए radiofaza.com.uk की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए।

जी तो माय लवली डिवास एंड मेरे सभी लिसनर्स, काफ़ी बात होगी किचन की, काफ़ी बात होगी खाने की, लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ी सी द स्पिरिचुअल सोल के ऊपर। जैसा कि है आज जुमातुल मुबारक का पाक बाबरकत दिन, सो अल्लाह ताला ने इस दिन को तमाम दिनों में सबसे अफजल करार दिया है। यह दिन सिर्फ एक आम दिनों की तरह नहीं बल्कि होता है एक खास दिन। अब किस तरह से, चूँकि थ्रू आउट द होल वीक हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम में, अपनी दुनियावी ज़िंदगी को लेकर के हर एक चीज़ को हम अच्छा बनाएं, परफेक्ट बनाएं, लेकिन जुमा का दिन एक वाहिद ऐसा दिन होता है जो हमें रिमाइंडर देता है कि बस अब रुक जाओ, इट्स टाइम टू रिकनेक्ट योर सोल विद द गॉड जिसने हमें इस दुनिया में बनाया है, हमें भेजा है। और आज का दिन यानी कि फ्राइडे का दिन ही हमें इस चीज़ का भी रिमाइंडर देता है और हमें रियलाइज़ करवाता है कि हमारा इस दुनिया में आने का बेसिकली मकसद क्या है। सो जी लिसनर्स, बात अगर हम इधर की करें या फिर करें हम उधर की, इंसान का दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है, उसकी इबादत करना है और कोशिश करना है कि अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से गुजारे कि वो अल्लाह की खुशनूदी में गुजरे।

तो जी लिसनर्स, किस तरह से हम आज के दिन को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने स्पिरिचुअल सोल को क्लीन कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, वो कुछ इसी तरह से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। और कहा जाता है कि फ्राइडे के दिन अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो वो डायरेक्ट आपका कबूल होता है। और मेरा मानना ये है कि इंसान को हमेशा अपने फेथ को, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी मर्जी हों, जैसे जितने भी मर्जी दुनिया का रुख जा रहा हो, लेकिन अगर आप फुल यकीन के साथ, ईमान के साथ और तकवा के साथ दुआ करेंगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बाकी ये कि छोटी मोटी मुश्किलात तो चलती रहती हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आज का ये जो खूबसूरत सा दिन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा नेक कामों में सर्व करें, इबादत में सर्व करें। और जो मेन थिंग है जिसे आप, मैं और हम सब भूल जाते हैं वो है हकूकुल इबाद। जैसे कि हम हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद पर भी हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि, मैं ओवरऑल एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इबादत तो कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हुकूकुल इबाद पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उनका छोटा सा अमल किसी दूसरे को तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। सो कोशिश करिए कि अपना भी ख्याल रखिए और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करिए और खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आज का दिन है एक खूबसूरत सा दिन। सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी स्पिरिचुअल बातें कर ली जाए। अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, जी तो लिसनर्स चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें। आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

वेलकम बैक लिसनर्स, वंस अगेन एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को खुशामदीद करती हूँ आपके फेवरेट शो द दीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में। जी तो लिसनर, रेडियो फजा ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहाँ मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट। यानी कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ की जाए कुछ इन्फॉर्मेटिव बातचीत जिससे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बने, मोटिवेशनल बने, अच्छी बने। साथ ही साथ मेरी और आपकी हो थोड़ी कम्युनिकेशन जिसपे कुछ आप मुझे अपने दिल का हाल सुनाएं और कुछ मैं आपको अपने अंदर की बातें बताऊं। और थोड़ा सा म्यूज़िक मस्ती हो और थोड़ी सी गॉसिप्स हो ताकि इंटरटेनमेंट का सिलसिला भी चलता रहे। जी तो लिसनर्स, मुझे बताइए कि आज के दिन, जैसे कि आज फ्राइडे है, सो नॉर्मली आप सभी के घर में ऐसे क्या रिचुअल्स हैं जो फ्राइडे के दिन अडॉप्ट किए जाते हैं? होता है ना कि हर घर का एक रिचुअल होता है। जैसे कि अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर का ये रिचुअल है कि फ्राइडे के दिन हम सबकी कोशिश यही होती है कि जैसे कि पूरा वीक हम सब बहुत बिजी होते हैं, टाइम भी नहीं होता क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, काम की टेंशन, जॉब की टेंशन और स्टडीज़ की टेंशन। सो इस टेंशन में हमें वक्त नहीं मिलता कि हम साथ में मिल बैठकर खाना खाएं। सो फ्राइडे का दिन वाहिद एक ऐसा दिन होता है जिसमें मेरे घर में हमारी ऑल फैमिली हम सब मिलकर साथ में एक साथ खाना खाते हैं, आपस में बातचीत का मौका मिलता है, एक दूसरे की ज़िंदगी के हाल अहवाल जानने का मौका मिलता है। तो लिसनर्स, आप सभी के घरों में क्या ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि फ्राइडे के दिन के साथ मंसूब हैं और फ्राइडे के दिन उनको पूरा किया जाता है? मुझे लास्ट में बताइए। 01157100971 है हमारा नंबर, यानी कि मेरा और आपका रابطے का नंबर। सो जी लिसनर्स, इस नंबर के थ्रू मुझसे लाजमी शेयर करिए और बताइए कि आपके घर के क्या रिचुअल्स हैं। जैसे कि आज फ्राइडे है, जुमातुल मुबारक का खास पाक नेक बाबरकत दिन, और रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी। सो मैंने सोचा कि जैसा कि मैं आपको हमेशा से सीरीज रिकमेंडेशंस देती हूँ तो क्यों ना हम थोड़ा सा आज बुक पे तबसरा करें। सो पूरी बुक तो बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट नो डाउट उसका स्क्रिप्ट, राइटिंग, राइटर, एवरीथिंग वाज फाइन क्लास। लेकिन जो एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, मैंने सोचा कि वो लिसनर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। सो बेसिकली वो कुछ लाइन्स थी, ट्रस्ट मी लाइन्स बहुत सिंपल हैं लेकिन जब मैंने उनको गहराई से समझने की कोशिश की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर एक छोटी छोटी बात के अंदर बड़े बड़े मीनिंग्स छुपे होते हैं। सो लिसनर्स, लाइन कुछ यूँ थी कि जस्ट बिकॉज यू थिंक इट्स सेफ हियर इट डजंट मीन दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। बाज़ुकात हम सबकी ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं, सरकमस्टांसेस होते हैं कि बाज़ जगहों पर बाज़ लोगों के साथ हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सेफ लगता है, ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन हर हार्ट काउंटर्ड समटाइम्स वेयर यू फील मोस्ट सेफ इज़ वेयर यू लीस्ट बिलोंग। बाज़ुकात हम जिस जगह में बहुत ही ज़्यादा खुद को सेफ और महफूज पाते हैं हम उस जगह से ताल्लुक़ ही नहीं रखते होते। सो सिंपली इस बात का जो मीनिंग है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, वो ये है कि बाज़ुकात हम किसी जगह पर होते हैं या कुछ लोगों के साथ होते हैं कि जिनका साथ, वो जगह हमें सब अपने अपना सा लगता है, लेकिन जो जगह हमें समटाइम्स अपनी अपनी सी लगती है वो वही जगह होती है जिससे हम बिलोंग ही नहीं करते होते। सो आई नो ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन यू फील दिस लाइन्स तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर छोटी छोटी बात के अंदर किस तरह से बड़े बड़े मीनिंग्स छुपे होते हैं। तो जो लिसनर्स, ये मैं बस एक बुक पढ़ रही थी और सडनली ये लाइन्स मेरी आंखों के सामने से गुजरी तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिसनर्स के साथ भी अपनी डीप थिंकिंग को शेयर किया जाए। आई नो आई एम नॉट अ फिलोसोफर लेकिन कभी कभी इंसान का दिल करता है ना कि हम थोड़ा सा फिलोसोफर बन के कुछ फिलोसफी जैसी बातें करें। सो बस ये मेरे माइंड में आया, मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। अगर आप सभी की भी कोई ऐसी फेवरेट बुक है या फिर कोई ऐसी फेवरेट बुक लाइन्स हैं तो आप सब मुझसे शेयर कर सकते हैं। सिंपली एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर, यानी इस नंबर के ज़रिए से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, फेवरेट ऑथर कौन सी हैं।
और वो कौन सी एक ऐसी लाइन है जिसने आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया कि आपने सडनली बुक बंद कर दी और आप अपनी डीप थिंकिंग में चले गए, जिस तरह से मैं इस लाइन को सुनते सुनते डीप थिंकिंग में चली गई थी।

जी तो लिसनर्स, जैसा कि बुक की बात हो रही थी, तो आज भी हमेशा की तरह मैं लाई हूँ आप सभी के लिए, अपनी लवली डिवास के लिए, एक ऐसी रिकमेंडेशन जिसे आप ज़रूर देखेंगी। एंड आई नो जब आप देखेंगी तो आप सोचेंगी ओ वाओ, क्योंकि ये जो सीरीज है बेसिकली इट्स अ न्यू सीरीज जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है अमेज़ॉन प्राइम पर। वैसे अगर देखा जाए तो सीरीज की गेम में अमेज़ॉन प्राइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि बुक अडेप्शंस बनाता है। और मुझे पता है कि मेरी लवली डिवास को, मेरी तरह जो बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि आई नो हम लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ते पढ़ते अपने माइंड में एक होल सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि ओ वाओ, अच्छा ये करेक्टर अगर रियल लाइफ में होता तो वो कैसा दिखता, और रियल लाइफ में अगर हम इस स्टोरी को देखें तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी बुक अडेप्शन पर सीरीज बनती है, सो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर रियल लाइफ में उन करेक्टर्स को देखती हूँ, फिर मैं जज करती हूँ कि अच्छा जो करेक्टर्स मैंने माइंड में सोच रहे थे, क्या ये रियल करेक्टर्स उनसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो जी इसी तरह से आज भी एक बुक अडेप्शन सीरीज रिकमेंडेशन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने भी कल ही ये सीरीज स्टार्ट की है, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा मैं और लिसनर्स लास्ट साथ सीरीज देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ, कोई ना कोई स्पॉइलर दे देती हूँ जिससे आप लोगों की क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो आज इस चीज़ का ख्याल रखते हुए द सीरीज नेम, हमारी सीरीज का नाम क्या है, आप सबसे शेयर करती हूँ।

सो बेसिकली हमारी सीरीज का नाम है एवरी ईयर आफ्टर, ठीक है, समर। एवरी ईयर आफ्टर समर तो हमारी बुक का नाम है, लेकिन सीरीज नेम है एवरी ईयर आफ्टर। सो बेसिकली ये एक स्टोरी है जो समर से रिलेट करती है, समर के इर्द गिर्द घूमती है, प्लस इसका प्लॉट बहुत अच्छा है। और जिन लोगों ने अब ये बुक पढ़ी होगी वो तो पहुंच चुके होंगे एंडिंग की तरफ, लेकिन अभी आपने एंडिंग के बारे में नहीं सोचना क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज को। सो बेसिकली ये सीरीज 10th ऑफ जून को Amazon Prime पर रिलीज हुई है, आई थिंक सो। मुझे बहुत अच्छी लगी दिखने में, फर्स्ट एपिसोड तो काफ़ी अच्छा था, आई थिंक आगे भी अच्छी होगी। सो माई लवली डिवास, लाजमी जाइएगा इस सीरीज़ को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। 01157100971 आपको पता ही है मेरा और आपका रबते का नंबर है। सो लाजमी इस रिकमेंडेशन को देखिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि इट्स अ रियली लाइक अ क्यूट रोम कॉम, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को और गर्ल्स को स्पेशली रोम कॉम्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, क्योंकि जितने भी हमारे मेल हजरात हैं वो बहुत एक्शन और थ्रिलर टाइप की चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उन्हें एक क्यूट सी लिटिल सी रोम कॉम स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। सो लाजमी देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। वैसे तो इसके 8 ही एपिसोड हैं और अगर आप फोकस करके देखें तो आई थिंक इस वीकेंड तो ये सीरीज कंप्लीट हो ही जाएगी। चलिए लिसनर्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी शो का वक्त भी हमारे इख्तितामी मराहिल के करीब करीब पहुंच चुका है, जैसा कि है आज फ्राइडे, जुमातुल मुबारक, एक ऐसा दिन जो कि रिमाइंडर देता है मुझे, आपको, बल्कि हम सभी को कि जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, अगले आने वाले पल का कुछ भरोसा नहीं, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है, इंसान बदल सकते हैं, फॉरएवर के लिए कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैं ना बचपन में जब छोटी होती थी तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचा करती थी, मैं बहुत ना थोड़ी चूजी और थोड़ी सिलेक्टिव हूँ, मगर जिन चीज़ों को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर उन्हें हमेशा चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहें। सो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं कुछ नहीं गड़बड़ करूँगी तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ चीज़ें फिर भी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमारा लाइफ पर, चीज़ों पर, इंसानों पर कंट्रोल नहीं है। यू नेवर नो कि अगले आने वाले नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए, जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सो कोशिश करें कि जिस मोमेंट में आप लोग मौजूद हैं इस मोमेंट को इंजॉय करें, इसमें जीना सीखें। और फ्राइडे भी है तो बेसिकली तो रिमाइंडर इस चीज़ का है कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है अगला आने वाला पल हम देख ही ना सकें, और जिस ज़िंदगी के लिए, जिस लाइफ के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, काम काज करते हैं, ऑफिस जाते हैं, एक हैक्टिक पैनिक रूटीन को फेस करते हैं, हो सकता है उस अगले आने वाले दिन में हम हो ही ना। सो कोशिश करें कि अपना इस दुनिया में आने का जो मकसद है इसे याद रखिए, हमारा, मेरा, आपका, हम सब का इस दुनिया में आने का मकसद है अपने गॉड की इबादत करना, अपने गॉड के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, और एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना कि जिसमें हम दिल में कोई बात सोचें और वो हमारे गॉड तक पहुंच जाए। वो एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिनका ताल्लुक एशियन कम्युनिटी से ही है, आप सभी भी जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही वेल ऑफ शायर हैं, इलामा इकबाल साहब। सो इलामा इकबाल साहब का एक शेर था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि सिंपली मींस यही कि आप अपने आप पे इतना वर्क करें, अपना मोरल, अपना ओवरऑल करेक्टर इतना स्ट्रांग बनाएं कि जब भी आप अल्लाह से कुछ भी मांगे, कोई भी दुआ करें, तो आपकी वो दुआ कभी रद्द ना हो और आपको वो ज़रूर मिले। यह तभी मुमकिन है कि जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। सो माई लवली डिवास, किचन में भी काम करना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल सोल पर भी आपको और मुझे काम करने की ज़रूरत है। सो कोशिश करिए, आज जुम्मे का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा काम तो जल्दी से निपटा लीजिए और फिर एक वक्त निकालें जिसमें आप इबादत करें, ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके साथ अल्लाह ताला से दुआ करें अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने हाल के बारे में। और जो लोग हमेशा गॉड पर बिलीव रखते हैं उन्हें कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करते। और साथ ही साथ जैसा कि है जुमे का दिन, सो थोड़ा टाइम निकाले अपनी फैमिली के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, खूब मज़ेदार सा खाना बनाएं, उनके साथ बैठें, बातें करें, क्योंकि जहां ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है हमें नहीं पता कि नेक्स्ट आने वाले मोमेंट में क्या हो जाएगा।
सो ज़रूरत है इस चीज़ की भी कि हम अपने अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने इस लिमिटेड से टाइम को इंजॉय करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कल को हमारे साथ रहेंगी।

सी तो लिस्नर्स, इसी के साथ साथ मैं तमाम तर डिवास के लिए लाई हूँ आज एक ऐसी रेमेडी जो कि अमेजिंग है, और इस मौसम में जैसा कि अब जून स्टार्ट हो चुका है फाइनली, जून में कहा जाता है ना कि सम टाइम्स इन द मिडल ऑफ जून हीट वेव्स, क्योंकि हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जून में, यानी कि गर्मी पीक पर पहुँच जाती है। सो आप सभी को इस चीज़ का भी मसला पेश आ रहा होगा कि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है सडनली, बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं, बहुत डल ड्राई दिखती है, इवन के स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है क्योंकि हीट वेव्स तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो इट्स टाइम कि हमें बहुत ज़्यादा स्किन का ख्याल रखना है, स्किन की केयर करनी है। किस तरह से केयर करनी है? एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करके, सनस्क्रीन के साथ वीक में 2-3 मरतबा स्क्रबिंग करके। अच्छा, बॉडी स्क्रब डिफरेंट होता है और फुल फेस स्क्रब डिफरेंट। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बॉडी स्क्रब से फेस स्क्रबिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो आपकी एक्सफोलिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो जो हमारी स्किन है यानी कि हमारा फेस, वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसे ज़रूरत होती है थोड़े प्यार की, थोड़े एहसास की। तो जी आप फेस के लिए हमेशा एक डिफरेंट स्क्रब यूज़ करें और बॉडी के लिए एक डिफरेंट स्क्रब यूज़ करें। तो जी लिसनर्स, उस स्क्रब की रेसिपी तो मैंने आप सभी से शेयर की थी अपने लास्ट एपिसोड पे, आई थिंक जो आप सभी ने नो डाउन कर ली होगी। लेकिन उन तमाम तर लिसनर्स जिन्होंने इस स्क्रब की रेसिपी नो डाउन नहीं की, तो आप मुझे 0115710091 इस पर टेक्स्ट करिएगा, बताइएगा, मैं ये रेसिपी आप सभी से दोबारा शेयर कर दूंगी ताकि मेरे लिसनर्स इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। चलिए तो लिसनर्स, इसी के साथ साथ हमारे शो का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आई नो समटाइम्स इंसान को बातें करते करते इतना अच्छा फील हो रहा होता है, इतना मज़ा आ रहा होता है कि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता जाने का, लेकिन अभी जाने का वक्त तो हो चुका है। सो शो के इख्तिताम में एक बार फिर से आप सभी से आज का कोट ऑफ द डे शेयर करती हूँ। सो बेसिकली हमारा आज का कोट ऑफ द डे फ्राइडे से रिलेटेड था, क्योंकि है आज जुमातुल मुबारक।

हमारा आज का कोट ऑफ द डे कुछ यूं था कि फ्राइडे इज अ रिमाइंडर दैट नो मैटर हाउ हैक्टिक द वीक वॉज, पीस इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू एट द वीकेंड. डोंट कैरी यस्टरडेज बैगेज इन टू टमोरो स्काई. सो हमारा ये आज का कोट बेसिकली ये कहता है कि फ्राइडे एक रिमाइंडर होता है कि हम अपनी हैक्टिक रूटीन से बाहर निकलें और यस्टरडे के काम को, यस्टरडे की बोझ को आज बिना लेकर आएं, बल्कि अपने गॉड के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करें, एक ऐसा कनेक्शन जो कि हमारी रूह को साफ करे, रूह को खूबसूरत बनाए और हमें अंदर से एक अच्छा इंसान बनाए. जी लिसनर्स, आप सभी को उम्मीद करती हूँ ये कोट अच्छा लगा होगा. आई नो शो का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, सो माई लवली डिवाज शो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह, आपकी ज़िंदगी अभी बाकी है. सो कोशिश करिएगा आज के इस दिन को खूबसूरत बनाइएगा, मोटिवेटिंग बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा और सबसे बढ़कर अपने गॉड के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करिएगा, क्योंकि इंसान दुनिया में जिस मकसद के लिए आता है उसी को भूलकर इधर उधर लग जाता है, लेकिन फ्राइडे रिमाइंडर देता है कि वापस आ जाओ अपने मेन मोटिव पर. इसी के साथ साथ लिसनर्स, मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह डीवा डायलॉग के नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए आप radiofaza.com.uk की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए. जी तो लिसनर्स, जाते जाते ये खूबसूरत सा कलाम जो कि आबदा परवीन साहिबा ने अपनी खूबसूरत जाज़्बे नज़र आवाज़ में गुनगुनाया है, सुनते जाइए और साथ ही साथ मुझे अलविदा कहिए. अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATS, 11+,

0: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डिकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
1: hayatweddings.co.uk।
2: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशर।

बड़ा ही प्यारा इरशाद है कि जब जुम्मे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब कुछ छोड़कर जो है ना अल्लाह की तरफ भागना हो भागना चाहिए, और भागना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक वही ज़ात है जिसके अलावा हमारी कोई नहीं सुन सकता, एक वही बाबरकत ज़ात है जिसके अलावा हमारी तक

कोई कोई नहीं समझ सकता कि वही दर है जहाँ पर बार बार जाने से, बार बार मांगने से शर्मिंदगी नहीं आती और ना शर्मिंदा किया जाता है। और बेशक मुसीबत में आपने किसी को भी साथ नहीं पाया, लेकिन रब की ज़ात जो है ना वो हमेशा इंसान के साथ होती है। और वो एक वो कहते हैं ना तवक्कल, जब एक इंसान जब इंसान अल्लाह पे पूरा तवक्कल कर ले तो उसको पता होता है कि यार इतनी सी भी टेंशन जो है ना, इतनी सी मुश्किल जो है ना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वाकई नहीं बिगाड़ सकती, सब्र जो है वो इंसान को बस करना चाहिए, सब्र का दामन जो है वो थाम के रखना चाहिए। क्योंकि रब की रब अल्लाह ताला ने फरमाया था कि बाकी लोगों के पास माल दौलत होगा, लेकिन सब्र करने वालों के साथ रब की ज़ात खुद होगी। सब प्रोग्राम में जो है प्रोवाइड करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं और कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुंचाएंगे। सो आप मुझ तक कैसे पहुंचा सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडियो का लाइव व्हाट्सअप नंबर आपको नोट करवाए देती हूँ, 1157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी भी तरह के किसी भी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सब वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। सुबह बताइएगा कि जुम्मे का दिन जो है ना वो वीक का आखिरी दिन होता है और उसके बाद वीकेंड आ जाता है। सो ये दिन जो होता है ना, ये एक तो बड़ा सुकून का दिन होता है, और दूसरा ये कि इस दिन जो है ना, मतलब बहुत बहुत बहुत ही रहमतें जो है ना पे बरसती हैं। और होना मतलब अगर अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मतलब वो जो रब की ज़ात है ना, वो तो उन लोगों को भी देती है जो उससे मांगते नहीं हैं, जो उससे दुआ नहीं करते। मतलब आपके नसीब का जो रिस्क है वो आपको मिलना ही मिलना है। मतलब मैंने एक बंदे से सुना था कि अगर नसीब का रिस्क मिलना ही मिलना है तो फिर देरी क्यों हो रही है यार, मिलना चाहिए। मतलब इतना तरसाया क्यों जा रहा है? तो तरसाया नहीं जा रहा, आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है कि आपको रब की ज़ात पे कितना यकीन है, आप उस ज़ात पे कितना तवक्कल करते हैं, आपको कितना यकीन है उस रब पे कि वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि सब्र करने वालों के साथ उसने खुद फरमाया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ रब की ज़ात खुद होगी।

सो घर बैठी है मदीन जो मुझे सुन रही है, बताइएगा कि आप मुझे क्या करते वक्त सुन रही है, बताइएगा क्या हाल चाल है। मैं भी शायद आप मुझे काम काज करते वक्त सुनती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम होने वाला है और खाने पीने का भी जो है वो मेन्यू सेट किया जा रहा होगा कि खाने में क्या बनाया जाए। सो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई रेसिपी मुझसे पूछना चाहें सर वो भी पूछ सकते हैं। अभी मेरे से पहले एक ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी हुई थी आरजे ज़ैनब, उन्होंने आपको शायद रेसिपी भी बताई और मैं भी शायद आपको आपने सुनी भी हो। बट अगर कोई रेसिपी आप मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज के दिन के हवाले से हम तक पहुँचाना चाहें, या फिर खूबसूरत सा मैसेज भी प्यारे को डेडिकेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ट्रैक की फरमाइश आई थी तो भाई ट्रैक जुम्मे के दिन पे नहीं होते, ख़ास तौर पे इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होते। हमारी अगली ट्रांसमिशन में जो है वो मेरे ख्याल में ट्रैक शामिल कर दिए जाते हैं, बट अभी के लिए प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल नहीं किए जाएंगे, कलाम शामिल किए जाएंगे। कोई कलाम सुनना चाहें, कोई कलाम किसी के लिए लगवाना चाहें, कोई कलाम अपनी पसंद का लगवाना चाहें सो वो भी करवा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मेरे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर मुझे कीजिएगा मैसेज, जब तक आपका मैसेज मेरे काका कंप्यूटर पर जगमगाएगा उससे पहले हम अपने पसंद का एक छोटा सा कलाम जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डोंट से कि आबदा परवीन का कलाम ना हो, भाई यार मैं आबदा परवीन के कलाम शामिल करूं या किसी के भी करूं, आपको इससे क्या मसला, आपको सिर्फ मेरी आवाज से मतलब होना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम में जो है वो कलाम शामिल किए जाएंगे, पर अभी के लिए प्रोग्राम में इस छोटे से कलाम को शामिल करते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं छोटे से कलाम के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड दैट, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलू राज। मिलते हैं इस कलाम के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल किया था, मेरे ख्याल में छोटा नहीं, थोड़ा लंबा ही हो गया था, पर कोई बात नहीं। मेरा आपका साथ ठीक ठीक 2 बजे तक रहेगा, सो अभी बहुत टाइम है मेरे आपके दरमियान। तो गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बोलने में, आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ रहूँ, आपका साथ देती रहूँ ठीक ठीक 2 घंटे का, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि यार सलूराज पता नहीं कहाँ चली गई है।

सवाल उसी के साथ साथ मुझसे प्रोग्राम में एक मैसेज शामिल करवाया गया और मुझसे पूछा गया कि मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, तलबगार किसे कहते हैं। तो मेरे सामने मतलब मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अभी अभी रिसेंटली जो एक ड्रामा ख़त्म हुआ है और उसमें बादशाह का एक डायलॉग था कि जो आपकी एक झलक देखने के लिए तड़पता हो उसे तलबगार कहते हैं, जो दुआओं और हर जगह में सिर्फ आपको मांगे उसे तलबगार कहते हैं, जो कोशिश करके भी आपको भुला ना पाए उसे तलबगार कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी डीप लाइन और मैंने वैसे इस चीज़ को इतना गौर से नहीं पढ़ा, बट मेरे सामने जो है ना मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, मेरे काका कंप्यूटर पे एक छोटा सा मैसेज आया, तो मैंने सोचा कि आज जब मैंने वो मैसेज रीड किया तो अचानक से दिमाग में ना मेरे दिमाग में ये वाली लाइन है, तो मैंने फ़ौरन से इसको सर्च किया, मैंने सोचा क्यों ना इसको आप तक पहुँचा दिया जाए। सवाल प्रोग्राम में जो है वो आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक छोटा सा टॉपिक शामिल करवाया जाता है, उस टॉपिक के हवाले से डिस्कस जो है वो स्टार्ट की जाती है, बट प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहेगा ठीक हो ठीक 2 बजे तक। सो बात करें तो एहसासात की, मतलब लंच बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं उसमें सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं, बहुत से ऐसे एहसासात छुपे होते हैं जो लोगों ने अपने आप से छुपा कर रखे होते हैं, जो वो चाहते हैं कि वो हमें भी ना उसके बारे में पता चले, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अजियतनाक होती हैं और उन चीज़ों का अपने आप को पता ना भी ना चले तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है हमारे लिए भी। तो कहते हैं कि कुछ लोगों के ऐसा साथ इतने नाजुक होते हैं कि एक ज़ोरों से घूरती हुई आंख, एक ऊंची आवाज़, सख्त लहजा, एक बुरी बात इंसान का एक पूरा दिन बर्बाद कर सकती हैं, और मेरे ख्याल में ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, बहुत कम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा भी होते हैं, वो इंसान पर डिपेंड करता, मतलब हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। उसने जब एक वर्क प्लेस की तरफ निकलना है तो उसने अपने आप को एक परफेक्ट बनवा के निकलना है, हंसते मुस्कुराते, जो परेशानी है वो उसका दूसरा चेहरा है, वो उसने अपने दूसरे चेहरे की तरफ छुपा के रखी हुई है, मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ मामलात जो होते हैं उनको सिर्फ अपने तक रखना होता है। सो हर इंसान के जो है वो दो चेहरे ही होते हैं। वो कहते हैं ना, महबूब मयसर हो और तन्हाई भी कायम हो तुम इस अजाब की शिद्दत को कहाँ समझ सकते हो। एक तो मुझे शायरी में बहुत लगा हुआ है तो मेरे जो है ना वो अल्फाज में शायरी जो है बहुत ज़्यादा आम हो गई है, मतलब मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं हर जवाब जो है वो शायरी से दूं, बट हर जवाब जो है वो शायरी से निकलता है, तो अगर मैं आपको सही से जवाब दे भी दूंगी लेकिन उसका शायरी में भी मतलब निकाल के आपको ज़रूर बताऊंगी।

0: बात कर रहे थे कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, मतलब वो एक टाइम पे दो चेहरे लेकर नहीं निकल सकता, हर जगह पे उसका अलग से एक फेस होता है। मेरे ख्याल में कि ऐसा होना चाहिए, इंसान को पावरफुल भी होना चाहिए और थोड़ा सा डाउन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रोते नहीं हैं, अगर आप गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अगर आप अपने आप को टूटने नहीं देते, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। आज मैं प्रोग्राम में बात करूँगी गर्ल्स कॉन्फिडेंस की, कि वो कैसे पैदा हो सकता है। अपनी वैल्यू पहचानने में हमें, हम खुद जो है ना वो दिक्कत कर देते हैं, खुद जो है हम इस चीज़ को जो है ना वो साइड में कर देते हैं। अपनी पहचान हमें खुद समझनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया भी समझ लेती है। आज हम प्रोग्राम में इस टॉपिक को शामिल करेंगे, गर्ल्स कॉन्फिडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट प्रोग्राम में जो है वो एक छोटे से कलाम की फरमाइश भी मौजूद है और सुलराज का गला भी थोड़ा सा ख़राब है, खराश जो है वो बदतमीजी बहुत ज़ोर से हो रही है और बोलने में मसला हो रहा है। मे भी शायद आप नोट कर रहे हो कि बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट प्रोग्राम में जो है वो गपशप आपके साथ लगी रहेगी। बट जब आपके साथ लगाव ज़्यादा हो जाता है ना, इट्स मीन के जब मुझे लगता है कि अब हमें आपसे कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती, तो वो एक छोटी सी जो है ना कमर्शियल ब्रेक, वो बीच में आ जाती है और वो आके डिस्टर्ब कर जाती है और वो सारी गेम को ख़राब कर देती है। लेकिन हम इस गेम को ख़राब नहीं होने देंगे। जो लोग दिल से आपके साथ रहते हैं वो गेम वहीं से शुरू करेंगे, वो रिश्ता वहीं से शुरू करेंगे, वो आपकी इस छोटी सी चीज़ को जो है इग्नोर करेंगे और दोबारा उसी रूटीन पे आपके साथ आ जाएंगे, उसी तरतीब से आपके साथ चलने लग जाएंगे जिस बारे में, जिस तरह से आप उनके साथ चल रहे थे, जिस बारे में आप उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। और उसी के साथ साथ जो है प्रोग्राम में अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहें अपनी तरफ से, तो आप वो भी करवा सकते हैं। जिन नए लोगों ने आज रवि फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। अब बात करें, कुछ लोग भाई मेरी आवाज़ सुनने को भी तरसते हैं और आप जो है वो फ्री में बैठ के मेरी आवाज़ सुनते हैं। बट आपने इस बात को जो है वो ज़्यादा सीरियसली नहीं ले लेना, क्योंकि तंज़ो मज़ाक जो है वो प्रोग्राम में चलता रहता है। मैं आपको तंग करती हूँ, आप मुझे तंग करते हैं, बट प्रोग्राम में जो है अभी के लिए इतना कह देते हैं कि आप इंफॉर्मेशन जो है हम तक पहुँचाइएगा गर्ल्स कॉन्फिडेंस के बारे में, उसके हवाले से आकर डिस्कस आपके साथ करेंगे। बट अभी के लिए प्रोग्राम में जो है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आयल होगी, कमर्शियल ब्रेक के उस पार प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल करेंगे और फिर उस कलाम के बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू कर लेंगे। स्टे ट्यून फजल 97.1 FM एंड ऐप, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजल के साथ विद सलूराज। मिलते हैं छोटी सी चुनमुनों सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations! That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677. And they are in Pure Gym building. So, parking is available. And they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
8: Aap sun rahe hain Islami Nashriyat Faza 97.1 FM aur DAB par.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से। फिर ग्राम आप सुने रंज फोक्स राउंड आवाज आप सुने सुरार की सोल। सॉरी सॉरी सॉरी, BGM आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुना दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। खैर है, कभी कभी जो है BGM को भी ज़्यादा सुन लेना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो बस मैं चेक ही करना चाह रही थी ना कि आपको मेरा कितना इंतज़ार है। तो वह मुझे मैसेज करते हैं यानी कि सलूराज आप बोल ही नहीं रही, BGM बोली जा रहा है बोली जा रहा है। सो बात करते हैं गर्ल्स कॉन्फिडेंस की। लड़कियों में इस चीज़ में, लड़कियों को इस चीज़ में, किसी भी चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रखना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। ये चीज़ हमें अपने घर वालों से मिलती है। जब हम अपने घर में उठते बैठते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, सो ये चीज़ घर से ही मिलती है। आप अपने बेटियों को, अपने बेटों के भी चले बात कर लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को दें कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद दे सकें। ज़रूरी नहीं है घर वालों के फैसले हमेशा सही हों, कभी कभी घर वालों के फैसले भी गलत हो जाते हैं और फिर ये बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब करके रख देते हैं। एक पुरतमाद लड़की जो है ना, अपने राय का इजहार करने, फैसले लेने और अपनी अपने मकसद को हासिल करने में ज़्यादा कामयाब होती है। सो आप खुद फैसला लेने, हर इंसान को हक है, हर इंसान को राइट है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकता है। इसकी अहमियत देखी जाए तो तालीम में बेहतर किरदार अदा करती हैं और नई महारत सीखने का जो है ना वो हौसला बढ़ता है लड़कियों में इस चीज़ से, जब उनमें कॉन्फिडेंस होता है। महारत से याद आया, महारत इसमें महारत है, लेकिन मुझे महारत से एक शेर याद आ गया जॉन एलिया का कि तामील होने वाली थी जो आग लग गई उस इमारत को, कुछ इस तरह ऐसा लग गई आग उस इमारत को, कुछ इस तरह से था। सो मतलब कहाँ से कहाँ बात को उठा कर ले जाती हूँ। बात कर रहे हैं हम जो उस पर आते हैं, मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत देनी चाहिए लड़कियों को, और जब आप उनको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद सही लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बेटी जो फैसला ले वो गलत ही लेगी, नो, हर फैसला जो है वो अच्छे के लिए होता है, और अगर बुरा हो भी गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे फैसले जो है वो होते रहते हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आता रहता है ज़िंदगी में, सो इस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर दें। हम लोग ऐसे लोग हैं कि अगर बेटी ने कोई फैसला ले लिया ना, अगर बच्चे ने खुद कोई फैसला ले लिया और वो गलत निकल आया, तो हम सारी ज़िंदगी उसको वो ताना देते रहेंगे कि यार तू उस टाइम तो फैसला किया सी, तू है अपनी मर्जी कितनी सी, तो फिर है वैसे। ना ना ना, ये चीज़ जो है ना ये नहीं करनी। ये जो है ना आपके बच्चों को, बच्चों के दिमाग को जो है वो डैमेज कर देती है। घर वालों की बात जो है ना वो बच्चों को कमज़ोर कर देती हैं। सो कोशिश करें कि अपने बच्चों को उस चीज़ के बारे में बार बार ताने मत दें जिस चीज़ को वो भूल चुके हैं या जिस चीज़ को वो भूलना चाह रहे हैं। बस आप अपने दिमाग में एक चीज़ को रखें कि आपने कामयाब होना है, और कामयाब होने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को जो है फेस करना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा जो आपको अच्छी नहीं लगती। नए काम करने की कोशिश करें, अपनी राय जो है वो उसको बढ़ा दें। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि दूसरों के मामलों के टांग मामलों में टांग नहीं अड़ानी, क्योंकि टांग तोड़ दी जाती है, बट दूसरों के मामलों में टांग अड़ानी चाहिए ही नहीं। अगर फैसला सही हो जाना तो इंसान आपको कभी भी वो नहीं बोलेगा कि यार तू है उस टाइम मेरी मदद की, या तू मैंने आया मशवरा दिता सी, मैं फिर इस टाइम है तेरी वजह से है। ना ना, कोई नहीं करता इस तरह की बात। सब बोलते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, अपनी वजह से हुआ है, लेकिन जब वही मशवरा वही राय गलत निकला ना, तो इंसान आपको इतना कोस देता है कि हमें भी ऐसे फील होता है कि यानी कि मतलब हमारे से बुरा इंसान कोई ज़िंदगी में, दुनिया में है ही नहीं है। सो ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको हौसला दें, ऐसे लोगों के साथ वक्त ना गुजारें जो आपको हर चीज़ में बोलें कि नहीं यार तुम ये चीज़ नहीं कर सकती, तुम इस चीज़ को छोड़ दो, एटलीस्ट तुम तो इस चीज़ को छोड़ दो, तुम तो इसको कर ही नहीं सकते। सो उन लोगों के से जो है ना थोड़ा किनारा कशी कर लें, उन लोगों से दूर रहें।

प्रोग्राम में जो है एक छोटी सी फरमाइश मौजूद थी आबदा परवीन की आवाज़ में, तो आइए उस आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। कलाम शामिल किए जाते हैं, अरे लोगों तुम्हारा क्या। सो आबदा परवीन की आवाज़ सुन के मतलब मुझे तो सुकून मिलता है मिलता है। आई डोंट नो आपको क्या सीन है इसके साथ, मतलब इनकी आवाज़ को लेके आपका क्या आइडिया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आबदा परवीन की आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत बहुत बहुत, और सॉफ्ट सी, जिसको सुनने के बाद बद इंसान अपने थकन जो है इंसान की उतर जाती है, टेंशन है वो भूल जाता है। सो अगर आप डिस्टर्ब हैं किसी भी बात को लेके तो आप मुझे बता दें, मैं प्रोग्राम में जो है वो कलाम शामिल कर दूँगी, वो कलाम जिसको सुनने के बाद आपका मूड जो है वो स्वस्थ हो जाए, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए, और जो बात आपको डिस्टर्ब कर रही है वो भी आपसे दूर भाग जाए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर किसी भी मामले में आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो अकेले रहना तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं ठीक। उस इंसान को वो बात बताएं, उस इंसान को उसके साथ अपनी वो टेंशन या किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो सकती है वो शेयर करें, ताकि अगला इंसान जो है ना वो एक तो आपको आपकी हौसला अफजाई करेगा, एक तो आपके दिल को सुकून भी मिल जाएगा। एक बार बात शेयर कर दो ना किसी के साथ तो होता है दिल को सुकून मिल जाता है। मेरे साथ भी होता है, मैं भी जब तक बात किसी के साथ शेयर ना कर लूँ, और मैं हर किसी के साथ नहीं करती, एक पर्सन जो है ना वो ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसके साथ इंसान हर बात शेयर कर सके। वो दोस्त हो सकती है, कोई आपका चाहने वाला हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके बाबा हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट बात को शेयर कर देने से जो है ना दिल का बोझ हल्का हो जाता है। सो आइए सुनते हैं इस कलाम को, इस कलाम के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। एग्जैक्ट उसी टाइम पे आई हूँ जिस टाइम कलाम फिनिश हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, क्योंकि गला थोड़ा सा पता है ख़राब है, तो वो पानी आना जाना लगा हुआ मेरा कब से। सो स्टूडियो में पानी लाने की परमिशन नहीं है, वरना मैं पानी यहाँ पर ले आऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी वॉक भी कर लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है।

0: ऑफ ऑल प्रोग्राम में जो है मेरे साथ एक छोटी सी बात शामिल करवाई गई है, और टाइम मतलब मुझे वैसे चेंज करने का इतना टाइम होता ही नहीं है, एक तो आपके साथ गपशप भी करनी होती है, बट मैंने मैसेज एक सीन किया है, आपका मैसेज आएगा मुझ तक, तभी तो मैं आप प्रोग्राम में जो है वो अच्छे से बात कर सकूँगी। छोटी सी शिकायतें जो है ना, शिकायतों के बारे में बात की जा रही है, तो छोटी सी शिकायतें अगर संभाली ना जाएं तो बड़े फैसलों की बुनियाद बन जाती हैं, ऐसे फैसले जो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं देते। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और मेरे ख्याल में हर रिश्ते में बर्दाश्त होनी चाहिए। जहाँ पे देखना हो ना आपने, जहाँ पे आपने रिश्ता निभाना हो, वहाँ पे बर्दाश्त थोड़ा सा करना बनता है, क्योंकि अगर आपके लिए बात इम्पोर्टेंट है तो आप इंसान को भूल जाएं, अगर आपके लिए इंसान इम्पोर्टेंट है तो आपको बात भूलनी पड़ेगी। बहुत से रिश्ते जो हैं वो इसी बुनियाद पे चलते हैं कि इंसान बातों को इग्नोर करता है, और तभी घर चलते हैं भैया, ऐसे तो चलते नहीं हैं। किसी भी तरह का रिलेशनशिप होगा ना, किसी भी तरह का, बहन भाई का, माँ बाप का, किसी भी तरह का, वो इसी बुनियाद पे चलता है कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। जब आप गुस्से में आके अगर शिकायत करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो अब एक तो आपकी वैल्यू कम होगी, दूसरा अगले इंसान की नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं रहने वाली। सो, अगर कोई इग्नोर करता है तो मेरे ख्याल में कोई बात नहीं, उसको आप इग्नोर करें, उस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि इंसान ज़्यादा देर तक किसी से भी दूर नहीं रह सकता है। जिससे वो ज़्यादा अटैच हो उसे तो रह सकता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार आदत जो है ना वो प्यार से ज़्यादा बुरी है। सो इस चीज़ से जो है ना थोड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं प्यार को आदत बन जाना चाहिए, लेकिन आदत बन जाने के बाद उसमें प्यार कम नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सी ऐसी मतलब दोस्तों से सुना है, बहुत से ऐसे मेरे मतलब गर्ल्स, मेरा ज़्यादा से बात है तीन लड़कियों के साथ उठना बैठना, मैंने मतलब अपनी क्लोज फ्रेंड से बहुत सी ऐसी बातें सुनी है कि छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, बस यार अब नहीं यार, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना बनना पड़ता है, और इग्नोर करेंगे तभी आप ज़िंदगी में जो है एक रिश्ते को मुकम्मल लेकर चल पाएंगे। मेरी आदत यह है कि मैं किसी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती, मैं इंसान को समझाती ही हूँ, और समझाना कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर जो तो आप जब आप लोगों को दूसरों को समझाते हैं तो भाई उनको यही लगता है कि शायद फलासफियाँ मार रहा है या अपने से बड़ा है, मतलब इसको कुछ समझ नहीं है। ज़्यादातर यही कहा जाता है ना कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो इतना समझदार होता नहीं है, बट अगर कोई आपको ऐसी बात समझा रहा है तो मे बी शायद उसमें कोई बात हो, तभी वो आपको समझा रहा है। बस इसी से ख्याल रखें कि किसी के बारे में कोई गलत बात अपने मुंह से मत निकालें किसी भी तरह की। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी पे किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा देते हैं तो आपको उस चीज़ पे तब तक गुनाह मिलता रहता है जब तक वो इंसान वो गुनाह कर नहीं देता, वो चीज़ कर नहीं देता जिस चीज़ का इल्ज़ाम आपने उस पर लगाया था, तब तक आपको उस चीज़ का गुनाह मिलता रहता है। सो किसी के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचें, बहुत बहुत कम जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हैं, पर्दा रखते हैं। आज किसी का पर्दा रखेंगे तो कल को कोई आपका भी पर्दा रखेगा। सो और बोलने में मुझे मसला हो रहा है, और मैं अभी यही कर देती हूँ कि प्रोग्राम में जो एक कलाम शामिल कर देती हूँ, इससे पहले बोल बोल के तबीयत और ख़राब हो जाए, क्योंकि यू नो कि जब गला ख़राब हो रहा है तो बुखार जो है ना वो उसकी तो एकदम से वो झटका ही लगता है बुखार का, तो बुखार जो है ना वो मस्ट हो जाता है। गला ख़राब हो तो बुखार होता ही होता है, फीवर जो है वो होना ही होना है। सो अभी मैं कम बोलूँगी तभी मेरा गला ठीक होगा, गला ठीक नहीं होगा तो बुखार हो जाएगा। सो इस चीज़ का ख्याल आप भी रखिएगा मेरे साथ होके, प्रोग्राम में जो है मैसेज इसमें शामिल करवाती रहूँगी, पर अभी के लिए जो है वो एक छोटा सा कलाम शामिल करूँगी अपनी मर्ज़ी का, आपकी फरमाइशों को थोड़ा सा साइड भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा भी तो काम बनता है यार अपनी फरमाइशों को पूरा कर लें। अब हमारी फरमाइशों को पूरा कौन करेगा, तब जो इंसान आपकी फरमाइश, अच्छा कभी आपने सोचा है कि जो इंसान आपकी फरमाइशें पूरी करता है उन उस इंसान की फरमाइशें पूरी करने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा, मतलब कभी अगर दिमाग में ये चीज़ आई हो, कभी सोचा हो।
1: बिस्मिल्लाह।
0: दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की फरमाइशों के लिए जी रहे हैं, उनकी खुशी के लिए जी रहे हैं। सो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप किसी की खुशी के लिए उसके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी की खुशी के लिए उसके साथ हैं तो ये और बहुत अच्छी बात है। सो वेल, आइए सुनते हैं इस कलाम को, इस कलाम के पार रहेगी आपसे मुलाकात। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फजल 97.1 FM एंड डैप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए सवातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। आवाज़ आज थोड़ी सी मर्दाना मर्दाना मुझे लग रही है। खैर, बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम में एक छोटी सी मुझे ख्याल हुई थी और उसके बाद आपसे फिर रही मुलाकात। आवाज़ आप तक हम तक पहुंचाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचाना चाहें सो वो आप पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का नंबर बड़ा ही प्यारा है, तरीका बड़ा आसान सा, 1157100971। बस बैकग्राउंड BGM थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शामिल करेंगे बैकग्राउंड BGM को थोड़ा सा अलग की टाइप का, मतलब आपको सुन के मज़ा भी आएगा, मेरी आवाज़ को सुनने का और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आवाज़ तो मेरी वैसे ही बहुत मैजिकल है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा कलाम शामिल हो जाएगा तो और मज़ा आएगा। कव्वाली को शामिल कर देते हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, बट मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि शामिल कौन सी करूँ।

जी हाँ, तो कव्वाली हम ढूंढ के ले आए हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में। एक तो मुझे इनका नाम और वो जो उस्ताद, क्या नाम है उनका, आई डोंट नो क्या नाम है, मुझे नाम भी नहीं आता। मतलब मुझे इन दो पर्सन के नाम जाना, वो थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं। प्रोग्राम में सब्र की बात की जाए तो सब्र आसान हो जाता है जब इंसान को अल्लाह की हिकमत पर भरोसा हो जाए। तो फिर इंतज़ार, सब्र, राज़ी रहना मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई हैर ज़रूर होगी।

बस हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि कोशिश ये करें कि किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए, किसी की परेशानी की वजह आप ना बने, खुशी की वजह बने सबकी। वो कहते हैं ना कि सजदे में गिरने से पहले इंसान को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में है, क्योंकि दिल दिल एक बार दुख जाए ना तो वो संभलने में थोड़ा टाइम लगा देता है।

0: और ये गिले शिकवे दूर करने के एक खासूस दिन नहीं रखे होते, किसी भी टाइम आप अपने प्यारों को मना सकते हैं। हमारे में कहा जाता है कि ईद के दिन जो है वो अपनों नाराज़ लोगों को भी राज़ी करो। नहीं यार, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी खुशी के लिए या दूसरे की खुशी के लिए किसी इंसान को गले से लगा ले, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी को राज़ी करने, राज़ी क्या करना है भाई, जब तक आपने इंसान को राज़ी नहीं करना तब तक रब ने आपसे राज़ी नहीं होना।
1: किस शान से तू जलवानु माँ है राह मगर अकल के कैसा।
0: और ये बात भी मेरे ख्याल से इनकी इन्हीं की एक कवाली में है, और आई डोंट नो क्या थी लाइन, बट मैं याद करके आपको बताऊंगी।
1: तुझे दारू हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, मगर तशरीफ वर्मा तुझको अपने दिल में देखा।
0: हाँ, जे तू रब नू मनाना है पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनाना औखा है। सो रब तो मान जाता है, दो नफल पढ़ो तो वो तो

कहते हैं, मतलब आप जब उसके पास जाते हैं ना, सालों बाद भी जाएंगे, तो वो आपको ऐसे थामेगा कि जैसे आपकी अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। मतलब वहाँ पे वो वाला सीन नहीं होता कि यार तू एडा लेट आया, तू इन्ने दिनों बाद तेनू मेरी याद आ गई, ना ना ना, उधर ये चीज़ नहीं होती यार। उधर जाओ और एक सजदा करने की देर है, सिर्फ एक सजदा, सब कुछ सेट हो जाना है, तो सब कुछ। ब्लैक मैजिक जो है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को कम कर दें, क्योंकि रब के ऊपर यकीन रखेंगे तो हर चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी। तवक्कल अगर अपने रब की ज़ात पर करेंगे ना, तो आपको हर मुश्किल जो है वो आसान लगेगी। किसी की वजह से किसी के साथ तालुकात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कब तक है, कब तक नहीं है, कब तक सांस चलनी है, आई डोंट नो के क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो टाइम है उसको अच्छे से गुजारें, अच्छे से साथ रह कर गुजारें। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने मूड के हिसाब से ना चलें। मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। ना यार, मूड के हिसाब से क्या चल के करना भाई, अगले बंदे की खुशी को भी तो देखो। आप लोग अपने मूड को लेकर चलते रहना, ये मुझे चीज़ नहीं पसंद। और इस चीज़ पे मतलब पता नहीं आपको ये चीज़ अच्छी लगती है नहीं, बट मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि अपने मूड के रिलेटेड होता है इंसान अपने मूड पे डिपेंड करता है कि यार मूड है तो बात करेगा, मूड है तो मुंह बना के बैठे। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की खुशी के लिए किसी से बात कर लेंगे, किसी की खुशी के लिए किसी के साथ रह लेंगे, तो दो पल की गुफ्तगू भी जो है ना, वो गिरे शिकवे दूर कर देती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें कि अगर आप अपनी ज़ात के बारे में ही सिर्फ सोच रहे हैं ना, तो ये नहीं बात अच्छी। आपका काम बनता है कि आप दूसरों के बारे में भी सोचें। मगर

वो कहते हैं ना कि हमारा दिल वो जगह है जहाँ लोगों को तरबियत या तरतीब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती ये अब इंसान को पता है कि क्या सीन है। लोग जो है ना अपने किरदार के लिहाज से दिल में जगह बना लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब अच्छे इंसान के दिल में जगह बन सकती। ना ना, कोई भी अच्छा नहीं है, बुरे लोग हैं सब, कोई भी अच्छा नहीं है। मैं भी बहुत बुरी हूँ। हम लोगों को अपना आप बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरे का बुरा लगता है। नहीं, कोई इंसान बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं अपने अपने लिए। लेकिन

0: सो बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि दूसरों की खुशी के लिए भी खुश होना सीखें, दूसरों की खुशी की वजह भी बन जाएं, हमेशा अपने बारे में मत सोचें। मुझे जो लोग सुन रहे हैं बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई इतनी बुरी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक हक की बात कर रही हूँ कि आप अगर अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं तो आप पहले उन लोगों को राज़ी करें जिनको आपने अपने आप से नाराज़ किया हुआ, जिनको आपने अपने आप से दूर कर दिया।
1: अक्ल में जो गिर गया
0: बड़ा ही प्यारा फरमाना है कि अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है ना तो दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, दूसरों के लिए खुशी की वजह बनो। हो सकता है कि आपके पास उस इंसान के पास कुछ ना हो बांटने के लिए, लेकिन आपके पास बहुत कुछ हो। जब एक इंसान आपके पीछे लगातार भागता है ना, किसी भी तरह का रिश्ता हो, तो एक हद तक भागता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर वो टाइम पलट के उस इंसान पे आता है जिसके पीछे वो बंदा मिनते करके भाग रहा होता है कि यार मेरे से बात कर लो, मेरे साथ टाइम गुजार लो, मेरे साथ चलो, ये करो वो करो। नो, फिर टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि वक्त बहुत जालिम है। इस चीज़ का ख्याल रखें, आज किसी के साथ अच्छे से वक्त गुजारेंगे तो कल को वक्त आपके साथ भी अच्छे से रहेगा। अगर किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे, मतलब वक्त बुरा नहीं होता, लोग जो है ना वो इंसान, मतलब मेरा अपना माइंड ये कहता है कि मतलब वक्त बुरा नहीं होता, लोग जो है ना वो इंसान के वक्त को बुरा बना देते हैं। और वो बनाते कैसे हैं, मतलब अगर आप किसी के साथ बात नहीं करते, किसी के साथ उस तरह से मतलब नहीं तावन कर रहे, लेकिन आपकी वजह से जो है ना वो इंसान वक्त को बुरा समझने लगता है कि आज का वक्त ऐसा है इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना, वक्त बुरा नहीं होता, इंसान वक्त को बुरा बना देता है। सो प्रोग्राम में जो है आपके साथ गपशप चलती रहेगी, आवाज़ हम अपने आप तक पहुंचाते रहेंगे। आई नो मुझे सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाली एक शख्सियत जो है ना, मैं भी शायद वो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मुझे फीडबैक नहीं आया, मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि यार आप ये बोल रही हैं या आप ये बोल रही हैं, आप इस बारे में बात करनी, क्योंकि अभी तक मुझे इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया ना कोई मैसेज आया। तो मुझे ये लगेगा कि शायद आप मुझे नहीं सुन रहे, बट अगर सुन रहे हैं तो अच्छी बात है सुन रहे हैं। इंतज़ार किसी को कभी मत करवाएं, इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी, और वो कहते हैं ना कि जो इंसान जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है ना, उसके साथ वो चीज़ होके रहती है। और बुरी नहीं है, इंतज़ार करना चाहिए, बहुत ही हम उन चीज़ों का भी इंतज़ार करते हैं ना जो हमारे हिस्से में आती नहीं है, पर अगर जो हिस्से में आया हुआ है थोड़ा बहुत भी, उसका इंतज़ार करना मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है।

हमारी नफ्स की बेहतरी इसी में है कि इतना ही काफ़ी है कि हम उन चीज़ों को अपने आप से ख़त्म करें, उन हरकतों को अपने आप से अंदर करें जिस जिनकी वजह से, हमारी वजह से, उन चीज़ों की वजह से अगले इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, अगले इंसान को जो है ना वो दुख पहुंच रहा है। लेकिन ज़िंदगी में

0: वफादार इंसान का साथ बहुत जरूरी होता है किसी भी।
1: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप इस जगह पे रहते हैं, किसी जगह पे कोई जॉब करते हैं, तो वहाँ पे एक इंसान, मतलब किसी ना किसी इंसान पे यकीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह से आप जो है ना ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे, उस तरह से उस जगह पे सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे यार। किसी भी जगह पे आप हों, वहाँ पर आपको एक ट्रस्ट वाला बंदा जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। अब आप जब तक किसी पर यकीन नहीं कर सकते, तब तक आप उस चीज़ जगह पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे हवाले से ये चीज़ जो है मैं कहती हूँ। बट चलें, बात को कंटिन्यू करेंगे यहीं से आके। फिर प्रोग्राम में जो है वो इतना बता देते हैं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको खोने से डरता है, जो आपको बातें समझाता है, जो आपको समझता है, आपको छोड़ के जाने के बजाय आपके साथ है। सो उस इंसान को संभाल के रखें। मेरे पास भी है और मैं भी संभाल के रखूँगी। अब मैं ये नहीं बता सकती है वो लड़की है ये लड़का, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। बट ऐसे लोगों को संभाल के ही रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा जो है ना वो मौका नहीं देती इन चीज़ों को, उन मुखलिस लोगों से जो है वो दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलवाती आपको। सुबह प्रोग्राम में जो है अभी तक एक छोटी सी फरमाइश को शामिल कर देते हैं, और उम्मीद करेंगे ये जो मैं शामिल करने जा रही हूँ ना, ये एक तो फरमाइश भी है और दूसरा ये मेरी पसंद को भी पसंद है, यानी कि कलाम मेरी पसंद को पसंद है। ओहो, क्या क्या बातें करते रहते हैं यार हम।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज अपने सलराज की। सोल प्रोग्राम में अभी एक छोटा सा कलाम शामिल किया था अपनी पसंद का। सो उसी के साथ साथ मुझे फरमाइश होकर भी मैसेज आना शुरू हो गया, यार मेरी पसंद का भी ये कलाम शामिल कर दें। ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बड़ों से पहले प्रोग्राम में जो है वो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक होगी, और कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे, क्योंकि अगर मैंने फरमाइश को पूरा कर दिया तो आधी अधूरी चीज़ जो है ना वो वाकई नहीं अच्छी होती। कभी कभार आधी अधूरी चीज़ें भी सहूम देते हैं। ये मेरा आइडिया है, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभार आधी अधूरी चीज़ें भी खुशी देती हैं। उस इंसान को तो डेफिनेटली देती हैं जिसके पास खुशी की पहली वजह ही वो इंसान हो, वही खुशी की पहली वजह हो जो आधी अधूरी ही है। वो कहते हैं ना कि ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, बस अगर तूने सपुर्द कर दिया अपने को, अपने आप को उसके लिए जो मेरी चाहत है। तो वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है, अगर तूने मुहालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। अगर फिर भी तो जो है वो डामाडोल हो रहे हैं, तो जब तू अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चाहतों को मुझ तक सपोर्ट कर देगा, मेरे पर सपोर्ट कर देगा, और फिर वही होगा जो तेरी चाहत है। होगी मेरी भी वही चाहत, लेकिन तेरी भी चाहत वही होगी। गला बहुत बहुत शदीद दर्द कर रहा है और बोलने नहीं हो रहा मुझसे, आए क्या होगा मेरा। वह प्रोग्राम में अभी मेरा कदम आधा घंटा पूरा बाकी रहता है। सो अभी के लिए हम कहीं नहीं जाएंगे भाई, आपके साथ ही गपशप आपके साथ लगी रहेगी। सवल बैकग्राउंड बीजीएम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मेरे पास प्रोग्राम में एक बड़ी ही प्यारा जो है ना वो कलाम जो है उसको मैं शामिल करूंगी और साथ आपके साथ गपशप भी करती रहूंगी। इज माई मोस्ट फेवरेट, और इसको सुनने के बाद एक अलग सा ही सुकून जो है ना रूह में उतर आता है। बात ही सारी जो है ना वाली के दीवाना होने की है। सो कलाम को सुनिएगा, इसमें जो लिरिक्स है ना डिफरेंट, मतलब बहुत डिफरेंट है। इनको सुनने के बाद मेरे ख्याल में इंसान अपने आप में नहीं रह पाता, मतलब एक इंसान के अंदर एक नई रूह उजागर करती है, और वो जो होती है ना रूह, वो एक अलग ही लेवल की है, मतलब मेरा जहाँ तक मानना ये है। अच्छा, मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ कि कोई ऐसा कलाम जिसको सुनने के बाद आप, मतलब सुनने के बाद बोर नहीं होते, मतलब जिंदगी में कोई ऐसा मोस्ट फेवरेट ट्रैक भी तो होता है, इस तरह कोई कलाम भी होगा जो बहुत आपका फेवरेट होगा। सो मैं सबसे पूछती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि दिस, मुझे ये बहुत पसंद है ये कलाम, और जहाँ पर अली का जिक्र हो वो तो फिर पसंद होना ही है।

हैं तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सफल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरोज के। सफल प्रोग्राम में जो है बात को कंटिन्यू करेंगे, अगर बेबी के लिए प्रोग्राम में थोड़ी सी फरमाइश चाहिए उसको पूरा कर देते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, इन दोनों में मुझे जो है ना वो थोड़ा नाम का हो जाता है। सवाल आइए सुनते हैं इस खूबसूरत कलाम को, मिलते हैं इसके उस पार से। डोंट गो एनीवे, अभी के लिए रहिएगा हमारे साथ साथ।

जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक, खुश आमदीद करते हैं फिर से आपको रेडियो फजा के लाइव स्टूडियो से अपनी आवाज के साथ साथ, और साथ में एक बड़े ही प्यार से कलाम के साथ। सवाल बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का रेडियो फजा को ट्यून करने का प्लस यूज करने का, वक्त काफी कम रह चुका है मेरा आपके दरमियान, सोचा कि गपशप भी आपके साथ कर ली जाए। बट जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। और जो लोग मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रहे हैं। और अगर किसी को भूख लगी हुई है ना, तो फौरन से अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगवा लें, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। जब आप अपने लिए कुछ मंगवा लेंगे ना या ऑर्डर कर देंगे, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भी चुपके से जो है ना ऑर्डर करके ना चुपके से, वैसे तो स्टूडियो में खाने नहीं देते, बट चुपके से मैं ले आऊँगी और फिर मिलकर जो है ना वो खाना खाएंगे। जरूरी नहीं कि एक दूसरे को देख सके, बातें करने से, बात आवाज सुनने से भी इंसान जो है एक दूसरे के पास ही होते हैं। तो जब आपके साथ दिल लग जाता है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि टाइम बहुत कम रह जाता है और फिर समझ भी नहीं आती। और जब आते हैं तो आराम से दरवाजा बंद करते हैं, जोर से नहीं करते, बुरी बात होती है।

सवाल प्रोग्राम में जो है एक और छोटी सी फरमाइश को पूरा कर देते हैं और फिर जो है आपके साथ मुलाकात होगी उसके पास आतिफ असलम की आवाज़ को शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद भी आएगी। ताजदार हरम कोक स्टूडियो सीज़न 8। आइए सुनते हैं इस कलाम को, मिलते हैं इसके उस पार। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से शामिल करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रही हैं लंच बॉक्स, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरोज की सुबह। उसी के साथ साथ वक्त काफ़ी कम रह चुका है और एक और फरमाइश पूरी करना बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरूराज की। उसी के साथ साथ आखिरी फरमाइश को पूरा कर दिया प्रोग्राम में, और मेरे ख्याल में वक्त भी अब ख़त्म हुआ जाता है। अब कल तक के लिए बुकिंग है, वीकेंड के बाद आपसे रहेगी मुलाकात। वीकेंड पे कहाँ जाने का प्लान है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है सब मुझे बताइएगा। वीकेंड के बाद भी आपसे गपशप जो है वो अच्छी खासी चलती रहेगी। मंडे वेडनेस में हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी के लिए आपका साथ छोड़े जाते हैं। हमारी अगली ट्रांसमिशन, हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ रहेगी। सो अगली मुलाकात तक अपना, अपने प्यारों का, अपने दीद के लोगों का और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मेरा और आपका अल्लाह निगेवान। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
9: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, या मौला हक इलाही।

0: जुबान है पर बोलता तू है
1: मेरा कुफ्री। आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
2: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रासिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात।
16: हाँ हाँ, छे देना नहीं, कुछ के नहीं।

ये जिंदगी चल तो रही थी पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया और अब तकदीर यही है कि तेरे हर एक ख्वाब को पूरा करूं, तुझे जिंदगी दूं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें। आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 FM पे सुनते रहिए FM 97.1 FM एंड टैप आपकी समातों के लिए एक खूबसूरत सा गाना हमारे कॉलर हैं एलन वॉकर की आवाज में सुनिए डीप हाउस

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

न मैं लिखूं ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
8: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
10: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
11: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
12: नॉनस्टॉप हिट्स, नॉनस्टॉप एनर्जी, रेडियो फजा 97.1 FM।
13: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026, 12 p.m. to 5 p.m., last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2A.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8

AE. तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला. बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid. मीडिया पार्टनर रेडियो फजा.

the radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/Eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026, 12 p.m. to 5 p.m., last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: फटू वाले पेपर।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, rollatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026।
3: यू आर लिसनिंग 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/Eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rulleton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wallitonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid want to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: जानिया।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
7: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
6: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
7: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
6: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
7: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
6: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने, सोने ते सुहागा ए, कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
7: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
6: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
7: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
6: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
8: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के

ये दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8-2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: 사람, June ki khushbu saath lekar aata hai. Eid mela mohabbaton ka pegham lekar aata hai. चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंगम, NG8-2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंगम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Fuzan 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: Hit music, entertainment, poetry, news and health. All under one roof. Our radio stations.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
6: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
11: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS.
11: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
10: टेस्ट भी वाइब भी.
12: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम, नॉटिंघम की जानिब।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026, 12 p.m. to 5 p.m., last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Get ready to move.
8: It's all about the beats.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

हो तूने न जाना मैं हूँ दीवाना, दिल में छुपी है मोहब्बत तेरी।

अरिया हा हा मान ले ओ गोरी कहना मेरा न जला हा हा अच्छा नहीं दूर रहना तेरा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore, only in Dedication Hour.

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा.
2: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: गुमा सुबह।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
1: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
1: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
1: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
1: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM रेडियो।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You're listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour.